नॉइज। एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई, नागरिकता भाई पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में एलजी, एलजी लाइफ्स गुड।

0: अपना खबर को साथ में गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भरपर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दर का लागि प्रतिबद्ध हिमाल सुनचाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचाँदी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।
1: रेडियो आदिखोला 105.4

0: सुनिए सुनिए, आइए हम लोग अनिमा 10 बजे का था।
1: इस समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल पोसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको 5 घरेता कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।
2: पहाडको छुक छुके दिल
3: कति राम्रा गीत बजेका कस्ता राम्रा राम्रा सन्देश आएका होइन यो त साँच्चै 105.4 मेगाहर्जको रेडियो आदि खोलेर क्या हो।
4: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोगलायो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज।